लमजुंग क्यारी दुर्घटना जोखिम लेयो तबा क्षेत्र ठ्योरी ट्राफिक संकेत मर्संग दिन छापा हर्सिंगेरा दुधपोखरेरी एक बजी थे म पर्यटन साइनबोर्ड पाउदेर मुबा वृद्धाश्रम री ज्येष्ठ नागरिक फिर दुर्व्यवहार विरूद्ध सचेतना दिवस मनिनु अन्तरपुस्ता सम्बन्ध बलियो बनेल पारिवारिक जोड़ दे मर्संग दिन सफा अलिकारी वैदेशिक रोजगारी तकिया फर्किया फ्रेसिमे लागि उद्यमशीलता तालिम पिमो तारंगी दूत आए फेटे बेलका नगरपालिका रायना नगरपालिका आठ स्थित सर्वोदय सेवा आश्रम एक्काईस ज्येष्ठ नागरिक फिरवी दुर्व्यवहार विरूद्ध सचेतना दिवस ऐन अवसर अधि ज्येष्ठ नागरिक फिरी तपा मुभा शिवधेर अनुभव अन्तरपुस्त हस्तान्तरण कार्यक्रम छिमो एकीकृत सेवा कार्यालय लमचुङै जी लाभा कार्यक्रम री कार्यालय प्रमुख मिता कुमारी थापैना अध्यक्षता दिएर जिल्ला समन्वय समिति लमजुङर भए प्रमुख पूर्णबहादुर तमैना प्रमुख आतिथ्या तरी तलो कार्यक्रम री पैमरी जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख पूर्णबहादुर तमुजी थेवा मिमेला यो समाज री थेमे सोयटी थेवा इतिहास मुभा बीमारी थेमेना माया ममता देर सम्मान देर मराधित व्यवहार लल परिवारी जोड़ पीमो कार्यक्रम ऐना अध्यक्ष मिता कुमारी थापजी सर्वोदय सेवा आश्रम कार्यक्रम आयोजना लल यो बारे थे बेले तौबा बीमारी थेवा मिमैना सम्मान संरक्षण देर अधिकार सुनिश्चित लवधिकता पक्ष जिम्मेवार तल परिवार बीम थिजी नेपाल सरकार जी थेवा मिमैना लागे विभिन्न कार्यक्रम दिएर मुई व्यवस्था लय खबा बीमारी मई लबा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पीवा स्याहार सुसार दिएर नासु तहरी थेवा मिमैना समिति गठन लैमा आफै हक अधिकारी लागे पोल परिवा बीमो प्रशिक्षक दिएर सर्वोदय सेवा आश्रम अध्यक्ष कृष्णराज ओलियाजी राज्यजी संविधान थेपमीमैना अधिकार सुनिश्चित खबर लिशु समय अन्तरपुस्त ज्ञान हस्तान्तरण अथवा कमजोर तसिया बीमो रोजगार दिएर शिक्षा कारण फ्रेसिमैदे बालो नासरी शहर दिएर विदेशरी यावक्रम बर्देशी यावा तैमरी बौआमा दिएर नाता नातिमैना महाजोरी सम्बन्ध कमजोर ततसी यावा अनुभव लभा संस्कार हस्तान्तरण असर ततसी यावा थिजी बीम छनायो प्रशिक्षक अंगराज घिमिरेजी थेवा मिमैना स्वास्थ्य प्रवर्धन लागि योग ध्यान दिएर तब थुमै लागि थेवा महत्वपूर्ण विषयले ध्यान पिल परिवार बीमो थिजी नियमित योग अभ्यास दिएर सन्तुलित जीवनशैली लल परिवार आग्रह लैमो कार्यक्रम अरी भानुभक्त थापा मगरजी स्वागत मन्तव्य ललो विषय लेखा प्रमुख उत्तम तमुजी कार्यक्रम संचालन ललो लमजुङरी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण लभ उद्देश्यजी दुर्घटना थेवा जोखिम मुभा छोरी थ्रो सेमरी नाइट भिजन रिफ्लेक्टिक ट्राफिक संकेत बोर्ड समेत थेमो जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय लमजुङ जी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड लमजुङ शाखा भए शाखैन समन्वय दिएर सहकारी मुसारी समयरी समेत स्पष्ट मोडखे बिमारी प्लुलो खोरी ट्राफिक संकेत समेत थेमो डुमरे बेसर चामेकिया नोरी परदिवा बेसर नगरपालिका ए गुदीपुर वैश्य नगरपालिका ए गाईखोरे झरना वैश्य नगरपालिका साथ भीमसेन थाना डेर सुन्द्रबजार नगरपालिका नौ सिउँडी बारहारी दुर्घटना क्षेत्र बेलेयो उच्च जोखिम मोबाइल खोरी चबोर थिम हो चालक मैते दुर्घटना न जोखिम क्या समय रह सचेत लबा लबाई लागि चुबोर थेवा बेम विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल लमजुङ चौथो अधिवेशन शनिबार छिमो अधिवेशन उद्घाटन महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष दिएर पूर्व मन्त्री रामचन्द्र अधिकारीजी ललो महासंघ अर्वे जिल्ला अध्यक्ष शालिग्राम अधिकारी अध्यक्षतरी तब कार्यक्रम दि विश्व हिन्दू महासंघ अर्वे केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रवेश घिमिरे गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष मुक्तिराम अधिकारी बागमती प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद सापकोटाजी सम्बोधन ललो भक्तमयजी सनातन हिन्दू धर्म संस्कृति दिएर परम्परा न जोगेन लबै लागि कृतल परिवार बीमो धार्मिक पर्यटन प्रवर्तन दिएर धार्मिक सम्पदा न प्रचार प्रसार दिएर संरक्षण महासंघ योजना बद्ध रूपरी वैंशो बर्दी परिवार बीमो कार्यक्रम जिल्ला भर प्रतिनिधि पदाधिकारी दिएर आजीवन सदस्यमय नगर समिति रूप पदाधिकारीमय उपस्थित मूलो चो अवसर जिल्ला समिति जी उत्कृष्ट के लबा समिति तक्या महासंघ सुन्दरबजार नगर समिति सम्मान समेत ललो
हमसुंगा मरसुंगी नगरपालिकाजी वैदेशिक रोजगार देखा फर्के खबर फ्रेसिमेदे लक्षित लैमरी निर्भय लगी उद्यमशीलता प्रवर्धन तालीम पीएमओ राष्ट्रीय रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम नोरी अंतरिक रोजगारी प्रवर्धन लभ उद्देश्य जी कार्यक्रम संचालन लैमो तालीम उद्घाटन रिपोईमरी अध्यक्ष अर्जुन तमुजी वैदेशिक रोजगारी क्रमरी थेमेजी युवा शिव अनुभव देरा ज्ञान दे स्वदेश रह्यो प्रयोग लैमरी आत्मनिर्भर तलखावा नासथेमे स्तर रह्यो रोजगारी देरा उद्यमशील सृजना लबा देरा फ्रेसिमेदे लबै लागि फ्रेसिमेदे प्रेरित समेत लैमो थेजे नासापालिकाजी उद्यमशीलता विकास रोजगार प्रवर्धन देरा उद्यमी फ्रेसिमेदे आवश्यक सहयोग देरा सहजीकरण लसी याबा प्रतिबद्धता लैमो कार्यक्रम नासापालिकाका उपाध्यक्ष जुनामाया थापा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विज्ञान पौडेल जनप्रतिनिधि कर्मचारी तेज तालिम सहभागी फ्रेसिमेदे उल्लेखनीय उपस्थिति मूल रोजगार संरक्षण नन्दराज समुची सहजीकरण लभा कार्यक्रम भेसा नगरपालिका उद्यम विकास सहजकर्ता अंशु कुमारी राणा देर मर्सिदी नासापालिका उद्यम विकास शाखा प्रमुख दीपेन्द्र कुमार भण्डारीजी उद्यमशीलता विकास व्यवसाय योजना निर्माण वित्तीय व्यवस्थापन बजार व्यवस्थापन तेरा स्वरोजगार अवसर सम्बन्धी विषय प्रशिक्षण पिलो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्याबिलाका संरक्षण कार्यालय भुजुङजे आर्थिक वर्ष 82-83 स्वीकृत कार्यक्रम नोर्वे दुधपोखरी छापातेर हर्सिङ क्षेत्र साइन पोस्ट थेम पर्यटन पर्यटक डेरा नासथेमेदे नासिमिन गन्तव्य पद मार्ग दिएर क्षेत्र सम्बन्धी आवश्यक जानकारी स्वस्थमा लागि उद्देश्यजी थेमेजी चुखियोरी साइन पोस्ट थेवा भुजुङर्वे एक्या भुजुङर्व प्रमुख प्रमोदा राजवेगमिजी बिमो थेरा अनुसार साइन पोस्ट स्थापना लबदी बालोयौं पर्यटकमै क्यारी प्रभाव बेलारी स्पष्ट रूपजी थेमेजी स्याल खाँबा अन्तर्गत बाह्र पर्यटक मध्ये थेमे याङहामा खिलोसम्म थोनीबारी सजिलो तबा बिम मर्सुङकी फेदी तखुबा लागि छौ भन्दा उहीँ छौ कर्ब फेदी फेदी देखे।

जुंगरबै थेथेबा क्यारी दुर्घटना जोखिम क्षेत्र रे ट्राफिक संकेत थेमो मर्संग दिर्बै छापा हर्सिंग दिर दुध पोखरी रे एक पर्यटन साइनबोर्ड समेत थेमो पाउँदिर मुबा वृद्धाश्रम ज्येष्ठ नागरिक फेरि दुर्व्यवहार विरूद्ध सचेतना दिवस मनेमो अन्तर्पुष सम्बन्ध बलियो बनेल परिपरि जोड पिमो दे मर्संग दिनासो पालिकारी वैदेशिक रोजगार देखिया फर्के खबर पश्चिमै लागि उद्यमशीलता तालिम पेमो फेदे तो खुबे लागि छिजी प्राविधिक थु दिपेशते धन्यवाद पिमारी फेदे कथ क्याङ खुची माया तमुसियो विदा किमु रेडियो मर्संग दी 95 मेगा हर्ज दे इन्टरनेट अनलाइन रेडियो मर्संग दी .org यदि दलत ओ छ्याजलो।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

नेपाल ऋण खप्पै बिमगा छ। क्याल्बोलुम प्रविधि से शोभा अल्मोनियम कोटेल सादा थिन रंगीन जस्ता पाता उलास ज्यूरा कलर छ्यान भन्दा तीन गुना बढी विश्वसनीय प्रतिरोधात्मक थिन लानन टुबमुला।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: नेशनल सिटी हॉस्पिटल
1: अत्याधुनिक सुविधा संपन्न भवन र प्रविधि सहित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको नेशनल सिटी हॉस्पिटल
2: विशेषज्ञ चिकित्सक र सेवाहरू
3: वरिष्ठ युरोलोजी एवं जनरल सर्जरी डाक्टर निर्मल लामिछाने र डाक्टर योगेन्द्र देवकोटा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर ज्योति विधान र डाक्टर संगीता पौडेल
2: पेट कलेजो तथा आम्रा रोग विशेषज्ञ डाक्टर वरुण श्रेष्ठ प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर निर्मला लक्ष्मी श्रेष्ठ नाक कान तथा घाटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिलीप कर्मचार्य
3: हाड जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुदीपमान वैद्य र डाक्टर योगेश राज पन्त
2: महिलामा हुने क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर बिनुमा श्रेष्ठ र डाक्टर मन्जु पाण्डे
3: क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर भोला रौनियार
2: फिजिसियन डाक्टर गौरीराम महतो
3: मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर सबिना सेनाई
2: हार्ड जोनी नसा तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुशील अधिकारी
3: बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर दामोदर तिवारी र डाक्टर किशोर उप्रेति
2: हेमाटोलोजिस्ट डाक्टर शंकर बस्ताकोटी
3: इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजिस्ट डाक्टर प्रदेश घिमिरे मेक्सिलो फेसियल सर्जन डाक्टर गणेश चौधरी इन्टरभेन्सनल पेन फिजिसियन डाक्टर विकास कुमार श्रेष्ठ
2: लगायत अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा सम्पूर्ण उपचार नेशनल सिटी हस्पिटलमा नेशनल सिटी हस्पिटल हस्पिटल रोड भरतपुर सम्पर्क 0564 93 611
1: तपाईँको स्वस्थ जीवन सेवाका लागि प्रतीक्षामा नेशनल सिटी हस्पिटल

0: कार्यक्रम सही नोरबेता
1: कार्यक्रम सही नोरबेता केमई सही नोर लोईथी बता केमई जान देप्रे केमई थुमे देप्रे रिमे मयुमे देप्रे बिलाख बतामई तारा केमई जी चु कार्यक्रम सही नोरबेता दक्या बिलाखामो चु कार्यक्रम टेडियो मर्संदी 95 मेगाहर्ज रे मंसिरा 21 गते बुधबार 98 बजे क्या खसिमो नेबार आमले दो
0: चु कार्यक्रम ए लागि केमई जी रेडियो मर्संदी जीमेल आईडी mersandireadio@gmail.com दे फेसबुक मेसेंजर केमई सैनोर बेतामै नेपाली र प्रिमरी पिमिल खामो केमई सैनोर बेता तारे चु कार्यक्रम क्या निजी प्रसारण लमिमो

0: समिति 14 के में बोदे लोटी पर दी रो बैंगे ने विवरण पी भी है मुई खाता लिखे हमरो
1: खाई खाई बहु कोई लोटरी भर दिलवा
2: आंगी समझो लोटरी पर दियो छामताई गुदी
1: भर दी आ भर दी बा लोटरी खाली पर दिन बा सैली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खने बने खाई बिसा खाई मई विश्वास आनन होने खाले पनी आफै विवरण खाई मई आपिन खबै बने वित्तीय संस्था के पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आफै बने आरी
3: सतर्क न ठगि सक्या पर्दैन
2: सिद्धार्थ बैंक क्यारे जन हेदरी जारी संदेश
4: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई
5: फागुनदेखि वैशाखसम्म आगलागी बढ़ी हुन सक्छ। आगोको सही र सुरक्षित प्रयोग नहुँदा जनधनको ठूलो क्षति हुन सक्छ।
6: आगोको प्रयोग गर्दा विशेष ध्यान पुर्याऊ। सलाई लाइटर मट्टीतेल जस्ता ज्वलनशील वस्तु बाल बालिकाले भेट्ने ठाउँमा नराखौं। खाना पकाउने ग्यास सुरक्षित राखौं।
5: आफ्नो टोल छिमेकमा आगलागी सम्बन्धी जनचेतना जगाऊ। क्षति घटाउन स्थानीय स्वयंसेवक टोलीको गठन गरौं।
6: गाउँघर तथा शहरमा समेत सम्भव भएसम्म पोखरी निर्माण गरौं। पानीका स्रोतलाई व्यवस्थित गरौं। समुदायसँग सहकार्य गरौं।
5: खाना पकाइसकेपछि आगो राम्रोसँग निभाऊ। ग्यासको प्रयोग गर्नेहरूले चुलो ग्यास रेगुलेटर तथा लाइटरको नियमित रूपमा निरीक्षण गरौं।
6: चुरोट बिडीको प्रयोग पश्चात आगो निभाऊ। ठुटा जथाभावी नफालौं। वन जंगल पेट्रोल पम्प तथा ग्यास डिपोको वरिपरि सलाई लाइटर तथा आगोको प्रयोग नगरौं।
5: घरमा मैनबत्ती धूप र दियो बाल्दा विशेष सतर्कता अपनाऊ। नजिकैको दमकलको नम्बर अनिवार्य सेभ गरेर राखौं।
7: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।